0: संगीती जेमर सर संगीती सदन बक्ष
1: राजेश शादी कोर
0: ये ज्यादा का नाम सिंधी का सिंधी शादी कोर ये जो दमुला वाला हमारा